भाई मां से सुनते में तो कैसे लहर भी सावन के संघाता लिलते अपना मन भगते हम चाहे।